0: कौन कौन देश में हुआ है?
1: सर मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ और सुनता भी नहीं कॉमेडी, बट मुझे नहीं पता
0: है। अच्छा ठीक है, आप तो कोशिश तो किया है, फोन किया है, बहुत अच्छा लगा है। वो दोबारा भी फोन करेंगे, वो अगले प्रोग्राम में फोन करेंगे, हिस्सा लेंगे। ठीक है, कोई कोई बात नहीं है। ओके ओके।